0: किरीक्षण तमो बहदे बाहु को माता से रित फल नो नियो बले अफेत जो वाता साउदी बाकुंडा से नियो पूजा बत्ती निपसन
1: Ovintis, nemak informasau balorong ohing, husi studi sentral kampung alor dili, hawer siana belo, lori kipa nebe servisu, hato brigadu wain, i adeus.

0: ठीक समय तम बहे बाहर जो माता से रही तक इन फल नो नियो बोले अफेर का जो रहता साउदी बाकुंडा से नहीं ना पूजा बक्की ने पिसन
1: Ovintis, nei maki informasaun balorong ohing, husi studi sentral kampung alor dili, hawer siana belo, lori ekipa nebe servisu, hato brigadu wain, i adeus.